0: बहुत महंगा है।
1: टॉम ने हेयर ड्रायर की कीमत तो उमदगी से पूछ ली, लेकिन बदकिस्मती से वो उसकी पहुंच से बाहर था।
0: अगर आप टॉम की तरह कहें ताकासुगीमास, यानी ये चीज बहुत महंगी है, तो बाज़ दुकानों में कीमत कम भी की जा सकती है।
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है,
2: कोनो ड्राइयर वा इकुरा देसु का?
1: ये हेयर ड्रायर कितने का है? इसके जरिए आप किसी भी चीज की कीमत मालूम कर सकते हैं।
0: अब हम आज के कलीदी जुमले की तशरीह करते हैं। कोनो के मानी है ये, दुराया का मतलब है हेयर ड्रायर, वा मौजू को जाहिर करता है, और इकुरा के मानी है कितने का। अब आज का नुक्ता, किसी चीज की कीमत पूछने के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है, इकुरा देस का,
1: यानी जिस चीज की कीमत पूछनी हो सिर्फ उसकी जानिब इशारे करके ये पूछना काफी होगा, इकुरा देस का।
0: जी हाँ, इसके साथ साथ पहले सीखे गए इशारती अल्फाज कोरे, सोरे, आरे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मसलन कोरेवा इकुरा देस का, यानी ये कितने का है। और अगर आपको उस चीज का नाम मालूम हो तो आप कोरे, सोरे, आरे की बजाय कोनो, सोनो, आनो भी लगा सकते हैं। इस सूरत में उसके बाद इस्म यानी चीज का नाम लिया जाएगा।
1: आज का कलीदी जुमला भी इस अंदाज का है, कोनो दुरायवा इकुरा देस का, यानी ये हेयर ड्रायर कितने का है। अब वक्त हुआ है मश्क का, तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
3: इकुरा देस का, कोनो दुरायवा इकुरा देस का, कोनो दुरायवा इकुरा देस का।
1: जी सामीन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: और अब किसी दुकान में होने वाला एक मकालमा सुनिए। ग्राहक दुकानदार से किसी चीज की कीमत मालूम कर रहा है।
4: सुमिमासेन, कोनो सुईहानकी वा इकुरा देसु का?
5: 8700 येन देसु।
0: अब इस मकालमे की तशरीह।
4: सुमिमासेन,
1: माफ कीजिएगा,
4: कोनो सुईहानकी वा इकुरा देसु का?
1: ये राइस कुकर कितने का है?
0: सुई हांकी, राइस कुकर यानी चावल बनाने वाले बर्फी आले को कहते हैं।
5: 8700
1: येन का है।
0: इन जापानी करेंसी का नाम है जिसे अंग्रेजी या उर्दू में येन कहते हैं।
1: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
3: इकुरा देसु का, कोनो सुई हांकी वा इकुरा देसु का? सुमिमासेन, कोनो सुई हांकी वा इकुरा देसु का?
0: अब दुकान के ऊंचे शेल्फ पर रखे हुए एयरफोन की कीमत पूछने की मशक करें। मतलूबा चीज चूंकि आप और दुकानदार दोनों से दूर है, चुनांचे उसके नाम से खबर इस्तेमाल किया जाएगा,
4: आनो, आनो।
0: और एयरफोन का जापानी तलफ्फुज़ है
4: इयाहोंग, इयाहोंग।
0: तो सामीन कोशिश कीजिए।
2: सुमिमासेन, आनो इयाहोंग वा इकुरा देसु का? सुमिमासेन, आनो इयाहोंग वा इकुरा देसु का?
1: मुझे यकीन है कि अब आप किसी भी चीज की कीमत पूछ सकते हैं।
0: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज का मकालमा कीमत के बारे में था। आप इससे पहले जू यानी 10 तक की गिनती सीख चुके हैं। अब हम कुछ बड़े आदाद बताते हैं। पहले दो हिंसों वाले आदाद, 20 या 30 जैसे आदाद के लिए 2 से 9 तक के जापानी आदाद के बाद जू यानी 10 लगाएं।
1: 20 के लिए नी यानी 2 के बाद जू यानी 10 लगाकर बनाए नीजू।
0: जापानी में 10, 20, 30 वगैरह 90 तक के आदाद यूं होंगे, जू, नीजू, सांजू, योंजू, गोजू, रोकुजू, नानाजू, हाचीजू, क्यूजू। अब 3 हिंसों वाले आदाद, 100 को कहते हैं ह्याकू। 200, 300 वगैरह के लिए पिछली मिसाल की तरह 2 से 9 के आदाद के बाद ह्याकू यानी 100 का इजाफा करें।
1: तो गोया जापानी में 200 के लिए नी यानी 2 के बाद ह्याकू यानी 100 लगाएंगे, इस तरह ये होगा नी ह्याकू।
0: जी हाँ, बुनियादी तौर पर तो ऐसा ही है, लेकिन बाज़ आदाद का तलफ़ुज़ कुछ मुख्तलिफ है। मसलन 300 है साम्ब्याकू, 600 है रोप्याकू, और 800 को कहते हैं हाप्याकू।
1: जी सामीन, इन्हें इसी तरह याद कर लें।
0: 1000 का बुनियादी उसूल भी यही है, 1000 को कहते हैं सेन।
1: तो 2000 के लिए नी के बाद सेन लगाकर बनेगा नी सेन, ठीक है ना?
0: जी बिल्कुल ठीक, लेकिन यहाँ भी कुछ आदाद का मामला मुख्तलिफ है। 3000 को कहते हैं सन जेन, और 8000 का तलफ़ुज़ है हस सेन। आदात को पढ़ते वक्त उर्दू की तरह जापानी में भी पहले बड़ी इकाई से शुरू किया जाता है। मसलन 1234 को जापानी में कहेंगे सेन नियाकू सांजू योन।
1: अब आज का मुकालमा एक बार फिर सुनिए, उस हिस्से पे खसूसी ध्यान दें जिसमें ताम हेयर ड्रायर की कीमत पूछ रही है।
2: ますね。
4: すごいでしょ。これはサラサラヘア、これはツヤが出るタイプ。
2: へー、いくらですか？
4: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません、このドライヤーはいくらですか？
6: 9900円です。
2: え、高すぎます。
4: हरु सान नो चिए बुकुरो।
1: अब हरु सान की जंबील का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान के करेंसी नोट और सिक्के।
0: जापान में चार अकसाम के कागजी नोट हैं। 1000 येन, 2000 येन, 5000 येन और 10000 येन। लेकिन 2000 येन का नोट ज्यादा आम नहीं।
1: अनवर साहब, जापान में हमें मुड़े तोड़े या बोसीदा नोट भी नजर नहीं आते।
0: जी हाँ, क्योंकि जापान का मरकजी बैंक, बैंक ऑफ जापान, پرانے نوٹوں کو نئے سے تبدیل کرتا رہتا ہے۔ خصوصاً 1000 ین اور 5000 ین کے نوٹ تو ہر سال یا دو سال بعد تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔
1: اور معاشرے میں نئے نوٹوں کا خصوصی کردار بھی تو ہے۔
0: جی ہاں بالکل، شادی وغیرہ جیسی پرمسرت تقریبات میں مبارکباد کی رقم دیتے وقت نئے نوٹ خصوصی تہنیتی لفافے میں ڈال کر دینا آداب میں شامل ہے۔
1: ایسے مواقع پر نئے نوٹ اچھا تاثر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو بچوں کو عیدی دیتے وقت بھی نئے نوٹ دیتے ہیں۔
0: جاپان میں سکوں کی 6 اقسام ہیں، 1 ین, 5 ین, 10 ین, 50 ین, 100 ین اور 500 ین۔ جاپان میں جگہ جگہ چیزوں کی فروخت کی مشینیں لگی ہوئی ہیں جن میں سکے استعمال ہوتے ہیں۔ تاہم ان مشینوں میں 1 ین اور 5 ین کے سکے استعمال نہیں ہو سکتے۔ دکان سے خریداری کے وقت تک وہ آپ کی جیب پر بوجھ بنے رہتے ہیں۔

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 5 मई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खवानों से सुने समाचार। जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने आर्थिक सुरक्षा सहयोग की रूपरेखा प्रस्तुत करता एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इन दिशा निर्देशों में ऊर्जा, अहम खनिजों, खाद्य पदार्थों और अन्य प्रमुख संसाधनों की आपूर्ति श्रृंखलाएं सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया गया है। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सानाए ने सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा में वार्ता की। ताकायची ने वार्ता की शुरुआत में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल जटिल और गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कारण से वे कई वर्षों से समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर देती आई हैं। नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थिर द्विपक्षीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ताकायची और अल्बानीज इस बात पर सहमत हुए कि अल्बानीज की जापान

यात्रा से पहले दोनों देशों के मंत्रीगण व्यापक सुरक्षा सहयोग को और बढ़ाने तथा संस्थागत रूप देने के ठोस तरीकों का पता लगाएंगे। दोनों नेता जापानी आत्मरक्षा बल और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच सहयोग मजबूत करने के प्रयासों पर भी सहमत हुए। नेताओं ने पुष्टि की कि उनके देश साइबर के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सामरिक साझेदारी करेंगे। उन्होंने पश्चिम एशिया, चीन और उत्तर कोरिया सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध व सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने के महत्व की पुष्टि की और वे तनाव कम करने के लिए निकट संपर्क में रहने पर भी राजी हुए। जापान और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों ने रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यकारी दल गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। जापान ने विदेशों को रक्षा उपकरण देने पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी है, जिसके बाद ये सहमति हुई है। जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो और उनके इंडोनेशियाई समकक्ष शफरी शमसुद्दीन ने सोमवार को जकार्ता में मुलाकात की। शमसुद्दीन ने जापानी नीति में किए गए इस बदलाव का स्वागत किया। पिछले महीने जापान ने विदेशों को रक्षा उपकरण देने से संबंधित अपने तीन सिद्धांतों और उनके परिपालन दिशा निर्देशों में संशोधन किया था। विदेशों को रक्षा उपकरण हस्तांतरित करने के नियम बचाव और परिवहन जैसी पांच श्रेणियों तक सीमित थे, जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव से जापान को सैद्धांतिक रूप से सुरक्षा पोतों और मिसाइलों जैसे घातक हथियारों के स्थानांतरण की अनुमति मिल गई है। रक्षा प्रमुखों ने और अधिक समन्वय के प्रयास में मंत्री, उपमंत्री और रक्षा बल प्रमुख जैसे तीन स्तरों की आपसी संवाद व्यवस्था स्थापित करने की भी पुष्टि की। जापान और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों ने जानकारी की सुरक्षा के तरीकों पर चर्चा को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। बाद में उन्होंने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा, आपदा संबंधी राहत उपायों और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान की वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी ने मौजूदा पश्चिम एशिया संकट के बीच आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे विकासशील देशों की सहायता के लिए एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के साथ सहयोग करने का संकल्प लिया है। कातायामा सोमवार को मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान में एडीबी की मंडल बैठक में शामिल हुई। इस क्षेत्र में इस बात को लेकर चिंता है कि ये संकट ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्थाओं को किस प्रकार प्रभावित करेगा। कातायामा ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जापान एडीबी के साथ मिलकर छोटी और मझौली कंपनियों को ईंधन की कमी से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों को निवेश और ऋण भी उपलब्ध करवाएगा। बैठक के बाद कातायामा ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाएं एशिया तक फैली हुई हैं, इसलिए इस क्षेत्र की मदद करना जापान के लिए काफी फायदेमंद है। जापान के आत्मरक्षा बल यानी जेएसटीएफ के कर्मियों ने फिलीपींस अमेरिका सैन्य अभ्यास के तहत गोलाबारी अभ्यास किया है। बालिकातान अभ्यास फिलीपींस में 20 अप्रैल को शुरू हुआ था। जेएसटीएफ ने इसमें भाग लेने के लिए लगभग 1,400 कर्मी भेजे हैं। सोमवार के अभ्यास में उत्तरी फिलीपींस के इलोकोस नॉर्थे प्रांत के तट पर आक्रमण को रोकने का प्रशिक्षण भी किया गया। यह क्षेत्र दक्षिण चीन सागर की ओर मुख किए हुए है। अमरीकी सैनिकों ने हाईमार्स नामक प्रणालियों से समुद्र में रॉकेट दागे। उन्होंने ड्रोन विमानों को भेदने के लिए सतह से हवा में मार करने में सक्षम पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली का भी उपयोग किया। जापान के थल आत्मरक्षा बल की उभयचर त्वरित तैनाती ब्रिगेड के लगभग 40 कर्मियों ने रिकॉयललेस बंदूकों से गोलीबारी की। इस ब्रिगेड का मुख्यालय नागासाकी में है। जापान और फिलीपींस के बीच पिछले साल लागू हुए सुरक्षा सहयोग समझौते के बाद ये अभ्यास किया जा रहा है। ये समझौता संयुक्त अभ्यास की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। जापान सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में बाल जनसंख्या घटकर 1,33,00,000 हो गई है। लगातार 45वें वर्ष इस आंकड़े में गिरावट दर्ज की गई है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय का अनुमान है कि 1 अप्रैल तक 14 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों की संख्या 1,32,90,000 थी, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 3,50,000 कम है। कुल बाल जनसंख्या में लड़कों की संख्या 68,10,000 है, जबकि लड़कियों की संख्या 64,80,000 है। आबादी को आयु वर्ग के अनुसार विभाजित करने पर आयु वर्ग कम होने पर संख्या कम होती जाती है। उदाहरण के लिए 12 से 14 वर्ष की आयु के 30,90,000 बच्चे हैं, लेकिन 0 से 2 वर्ष के आयु वर्ग के केवल 21,30,000 बच्चे हैं। देश की कुल जनसंख्या में बच्चे अब 10.8% है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.3 अंक कम है। ये प्रतिशत लगातार 52 साल से घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या पूर्वानुमान के अनुसार 1 जुलाई 2025 तक 4 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देशों में ये आंकड़ा दक्षिण कोरिया के 10.2% के बाद दूसरा सबसे कम है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK World Japan।